क्या नानक जंत विचारा। तू काट काट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुणे आख वखाणा। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी, तब तापें जपें बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहु समर्थ शास्त्र जी, कर करे आखट कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडे वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई, तुदे आपे पावे सोई वरतै जी, तू आपे करें सोई। तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जान होई। आसा महला चौथा। तू करता चार मैं डासाई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू दे सोई हूं पाई रहा। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करें तन नाम बरतन पाया।

तपारम। हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आपहां दे मोए बचावो, सुखी बसै मोर परवारा, सेवक सिख सबै करतारम।

प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिय, चुन चुन शत्रु हमारे मारिय। आप हां दे मुझे उबरे आए, मरण काल का त्रास निवरे आए। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करियो रक्षा। राख ले मोय राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आदि अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। चीटी ते कुंचर असूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जाबुद करख करा करतारा, प्रजा तर तब दे अपारा। जब या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेठ सब तार, आप अपने बूझो चार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेदे रियालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद्य अनिल अनाद्य असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कृपा निन मानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कहो कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुय तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा, कहबे सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कई भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं समट पयो शंकर कैठा। सगरे सृढ़ दिखाए चंपव, आज जुगा स्वरूप से अंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे बारे सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा होए ताए सब कला, दुष्ट अरिष्ट त्रै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय निहरि हो, ताके ताप तनक मोहरि हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाश्व सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जन नर नाम तिहारो कहा, दर दुष्ट दुख तेरा। खड़क के तुम्हें शरण तिहारी, आप हां दे ले उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते ले बचाई सवैया।

कहें माते क न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सभा बेद कहें हम एक न जानेयो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोय बखाने। दोहरा सकल दो

शब्द गावण आया। शब्दोता गावो हरि केरा, मन जने वसाया, कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया।

काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे, कह नानक ता सुख हुआ तित कर अन हद वाजे। आनंद सुनो वडपागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन पय सरसे पूरे गुरते जाने।

थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होय उधारो ए वस्त तजी न जाए नित नित राखुर तारो तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जतो नाही मैनू जो की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया

नानक नाम मिले ता जीमा, तन मन थीवै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकुर मात पिता हम बारक तुमरी कृपा में, कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा।

जो तिस पावे सो थिए इन बिदकंत मिली पौड़ी। हुक्मे सृष्ट साजियन बहुपित संसारा, तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा सच्चे लाख अपारा। एक नानो तू मेल लें गुर शब्द बिचारा, सच रते से निर्मले होमे ताज विकारा। जिस तू मिलै सो तुद मिलै सोई सचियारा, जिस तू मिलै सो तुद मिलै सोई सचियारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों वडभागे, जिथे आप जिया ने शब्द चौंकी उपरंत सोधा रहे राज साहब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने। सरबत दे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगतां ने सरवण किए हैं। समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का, सेवा निभाउणगे भाई अंग्रेज सिंह जी। उस तो पहला बेनती है गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े को मुख रखदे हां, गुरद्वारा साहब विखे भलके 1 सितंबर तो गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी की पाठ संथ्या की क्लास आरंभ हो रही है। ये क्लास हर सोमवार तो वीरवार तक शाम 7 बजे तो 8 बजे तक होया करेगी। जिन्हां संगतां ने गुरबाणी संथ्या क्लास विच जिहड़ी उह हाजरी भरनी है, वह अपना नाम ते फोन नंबर बार डेस्क उत्ते लिखाउण दी कृपालता करनी जी। इस संदर्भ विच 13 सितंबर दिन एतवार सवेरे 9:30 बजे अमृत संचार होगा। अमृत विभागी सज्जना अगे बेनती है, जिन्हां ने खंडे बाटे की पोल छकनी है वह अपना नाम ते फोन नंबर बार डेस्क उत्ते लिखवाउण दी कृपालता करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

सचनाओं सतगुरे अपना मनाए ले रूप चढ़ी ता अगला दूजा नाहीं थाओं ऐसा श्रृंगार बनाए तू मेला कदे ना हो वही एहन सलागे पाओ नानक सुहागण का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमै माए समाए महला तीजा लोकावे हों सुहवे सुहावेस करी वेसी शाह ना पाइए कर कर वेस रही नानक तिने शाह पाया जिने गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सो थिए इन बिदकंत मिली पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहु पित संसारा तेरा हुक्म न जापी के तड़ा सच्चे अलाखे अपारा एक नानो तू मेल लें गुर शब्द बिचारा साचरते से निर्मले हों मैं ताज विकारा जिस तू मिले सो तुद मिले सोई सचियारा जिस तू मिले सो तुद मिले सोई सचियारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरों की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जी नूं वडभागे जिथे आप जिया ने ढाडी जिथे पासों इतिहास सरवण किया है सरबादे भले की अरदास उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है पवित्र उपदेश आप संगत ने सरवण किए हैं हुण गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूपां की सेवा संभाल ते सोहरा साहब पावन बाणी के पाठ होणगे समाप्ति उपरंत आप संगत ने कड़ाह प्रसाद की देख ले के गुरु के लंगर विचों प्रसादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोहिला राग कौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का होए विचारो तित कर गाओ सोहिला सवेरे उस जनहारो तुम गावो मेरे निरपहु का सोहिला हूँ वारी जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जीअड़े संभालियन देखेगा देवनहार त्रिदाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन शुमार सम्मत सहा लिखिया मिल कृपा वो तेल देहो सज्जन आसीसड़िया ज्यों वे साहब सुमेल कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवान सदन हारा सिमरिए नानक से दया मन राग आसा महला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुर को वे सेने एक बाबा जैकर करते कीर्त होए सो कर राख बढ़ाई तो रहाओ विसोए चसिया कड़िया पैर थिती वारी मां होवा सूरज को रोते अनेक नान करते के वेस राग तना श्री महला पहला गगन मैथाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती तू मल्याण लो पवन चवरू करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खंड ना तेरी आरती अनहता शब्द वजंत पेरी रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नन्ना एक तोही सहस पद विमाल नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंध चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए तिसते चानन समय चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत इस भावे सो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिन मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को हो जाते तेरे नाए बसा
राग गौड़ी पूर्बे महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्ब लिखत लिखे गुर पाया, मन हार लियो मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर दंडवत पुन वड्डा है। रहाउ साकत हर साधना जाने, आतने अंतर हम एक कंडा है। ज्यो ज्यो चले चुभे दुख पावे, जम काल सह सर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बशुभ खंड ब्रह्मंडा है। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला इहां खाट, चलो हर लहाया गे बसन सुहेला। औद घटे दिन सरह नारे, मन गुर मिल काज सवारे। रहाओ ए संसार विकार, सहसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसह जगाए पिया वे एह रस, अकथ कथा तिन जाने। जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे, बोर न हुई गो फेरा। अंतर जामे पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मोको कर संतन की तू।

दिश शेरशाम दशा जैस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा सजन सचा पातशाह सिर शाम दशा जैस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमस्कार जो सत्संग जी सतगुरु की अपार बख्शे रहमत कृपा हुई है अमृत वेले जो नितनेम अनुसार सहज पाठ रंभ ने बाणी के पाठ आप जी ने सरवण किए ने आप जी ने बड़े प्यार श्रद्धा भावना के प्यार दे नाल पाठ सरवण किए ने और अज ये पाठ संपूर्ण हो गया। तकरीबन साढ़े पास तकरीबन घट्टो घट नहीं तो पांच ते छे पाठ जड़े ने वह तकरीबन संपूर्ण होए ने और उन्होंने तकरीबन भोग पैन वाले ने समा बनेगा तो आप भोग जरूर पावांगे पर मैं बेनती जरूर करांगा कि आप आने वाले समय में नवा गुरुद्वारा जड़ा है ये जड़ा है संपूर्ण तैयार जी आरंभता हो रही है इसकी तो मैं बेनती करांगा कि जदों ये फंक्शन रखना उदों इन्हां पाठां दे जिहड़े भोग ने वो पाए जाण क्योंकि सत्त अठ दिन का प्रोग्राम है तो तकरीबन छे क पाठ साडे कोल है ने ते आपां हर रोज़ एक पाठ का भोग जिहड़ा वो आपां पा के ते अरदास करिया करांगे तो गुरु कृपा करे चढ़दियां कला बख्शन होर भी किसी सेवा लैनी होवे लै सकदे अज पाठ नवा भी आरंभ होना है तो गुरु कृपा करे अज सब संगतां नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पहले प्रकाश उस दिहाड़े दियां बहुत बहुत वधाइयां। गुरु कृपा करे बाणी ते बाणे दे धारनी बणीए और बेनती अज सारिआं नूं पहले प्रकाश दिहाड़े दे उत्ते कि हर एक घर विच हर एक सिख दा आप सहज पाठ आरंभ होना चाहीदा और हर एक सिख अपने घरां विच पोथियां रख के नाल बच्चिआं नूं जोड़ के जदों पोथियां घर पईआं होणगीआं तो बच्चे पुछणगे भी ये किहड़े ग्रंथ ने फिर तुसीं दस्सिओ भी ये साडा गुरु ग्रंथ साहिब दा ते जिन्हां दे असीं पाठ करदे हाँ। सो इस करके गुरमुख पैरो कोशिश करो अज प्रण करो कि परिवार आपो अपना पाठ आरंभ करे एक पत्रा एक अंग दो अंग जिन्हें भी तुसीं पढ़ सको रल मिल के जरूर बाणी दे पाठ आरंभ करो तो घरां विच बाणी दा प्रवास करो प्रकाश करो। इस करके ही असीं दिहाड़े बनाए जिहड़े ने सकारत ने खिमन दा दाज का पांच मिनट उपर लै गया। सो आओ सरव करिए आसा की वार दे कीर्तन भाई साहब भाई परमिंदर सिंह दे जथे पासों फिर बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

तीर्थना वै अर्चा पूजा अग्रवास बहकार। जोगी सुन त्यावण जेते अलख नाम करता,

जुगो जुग अटल, चावर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहे अमृत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सजे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे अति सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब गुरुदेव दी हजूरी विच जुड़ बैठ के सतगुर की अमृतमई बाणी आसा की वार दे कीर्तन गुरु करके रागी जथे पासों श्रवण कर रहे सी। उपरंत सत्कारयोग भाई साहब जी ने गुरु चरणां विच सरबत दे भले दी अरदास करके अज दा जो पावन पवित्र मुखवाक है वो आप संगत दे नाल सांझा कीता है। तो उथे ही अज 1 सितंबर 1604 नूं आदि बीड़ दा जिहड़ा पहला प्रकाश है वो श्री दरबार साहब विखे होया, जिस बीड़ नूं धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने रामसर सरोवर के कंढे उत्ते बैठ के भाई गुरदास जी पासों लिखवाया, समुची बाणी गुरु साहबान की, भगत साहबान की, धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने अपनी बाणी, भट्ट साहबान की बाणी, गुरसिखां की बाणी, कुल मिला के 34 महापुरखों की बाणी गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने आप अपने हथी दर्ज की। 34 मैं तां बेनती की है, वैसे गुरु ग्रंथ साहब दे विच 35 महापुरखों की बाणी है। 35वें महापुरख जिहड़े ने वो दसां पातशाहियां विचों जिहड़े 9वें सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने, उन्हां दी बाणी धन गुरु कलगीधर साहब महाराज ने बाद विच दर्ज कीती है। तो पहले पंजां पातशाहां दी बाणी, इहदे नाल समुचे भगतां दी, भट्टां दी, गुरसिखां दी

बार बार हर के गुण गावो। गुर गम भेद सो हर का पावो। बार बार हर के गुण गावो। गुर गम भेद सो हर का पावो। रहाओ आदित करे भगत आरंभ। काया मंदर मनसा थंब। अहनिस अखंड

0: सिमरन गर्व ना बसे प्रभु के सिमरन दुख जम न से
1: प्रभु के सिमरन काल पर हरे
0: प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागे प्रभु के सिमरन आंदन जागे
1: प्रभु के सिमरन भव न व्यापे प्रभु के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभु का सिमरन साध के संग सर्वन धान नानक हर रंग
1: प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नौनिद प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिन से दूजा
1: प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु के सिमरन दरगे मानी
0: प्रभु के सिमरन हो सुपला प्रभु के सिमरन सुफल फला
1: से सिमरे जिन आप सिमराए नानक ताके लागो पाए
0: प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु के सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सबके सुझे
0: प्रभु के सिमरन आई जम त्रासा प्रभु के सिमरन

0: प्रभु को सिमर से पुरख प्रधान,
1: प्रभु को सिमर से बेमोताजे, प्रभु को सिमर से सर्व के राजे,
0: प्रभु को सिमर से सुखवासी, प्रभु को सिमर सदा अविनाशी,
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला,
0: प्रभु को सिमर से पर उपकारी, प्रभु को सिमर तन सद बलिहारी,
1: प्रभु को सिमर से मुख सुहावे, प्रभु को सिमर तन सुख बिहावे,
0: प्रभु को सिमर तन आत्म जीता, प्रभु को सिमर तन निर्मल रीता,
1: प्रभु को सिमर तन अंधक नेरे, प्रभु को सिमर बसे हर नेरे,
0: संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरी।

0: प्रभु के सिमरन अन चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरे से जन जिनको ब्रह्म
0: सिमरन कर भगत

0: भव सुख कनेरे
1: सर्व श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत सुखिया
0: लाख करोड़ी बांधना पर हर का नाम जपत न स्तर
1: माया रंग

0: पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम
1: सते उत्तम की कथा नाम संत दुख लथा
0: नाम की महिमा संत हृदय बस संत प्रताप दो।

0: देखने गगन बुझ कोट पावदर गई सिज
1: छोटस नाही अब प्यार मोबे आपे माया जाल
0: अबर कर तू सगली जमडान गोविंद भजन बलते ले मान
1: का नाम जब दुख जाए नानक बोले सहस भाए
0: चार पदार्थ जे को मागे साजना की सेवा लागे
1: जेको अपना दुख मिटावे
0: जेको अपनी शोभा लोर साध संग है हो मैं शोर
1: जेको जन्म मरते डरे साजना की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा
1: सगल पुरख में

0: उस्तत तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए।
1: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म।
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग तोर मत मल हिरिया।
1: सगल उदम में उदम भला का नाम जपो जी सदा।
0: सगल बानी में अमृत बानी हर को जासो रसन बखाने। सगल

0: रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी।
1: तू सास वार सिंगारिया, गर्भ घर में जिने वारिया।
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, पार जोवन भोजन सुख सूद।

0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर कर दुगमान
1: असर प्रसाद की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्व गोहिर
1: मिथ्या नेत्र पेट प्रतिहार पाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद
0: मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव
1: मिथ्या तन्ने पर पुकारा मिथ्या बास लेत बेकारा
0: बिन बूझे मिथ्या सब पै सफल देह नानक हर हर

0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरार्थ धाम।
1: तन तन ते जन जे कट बस्यो अरलाओ, नानक ताके बल बल जाओ।
0: ए थवर कशवर कमावत, माने प्रीत मुखों गंड लावत।
1: जानन हार प्रभु कर बीन, बाहर पेख न काहू पीन।
0: अवर उपदेश अपना करे आप।

0: राष्ट्रपति जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जे प्रसाद बस है सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग जे प्रसाद सुख से सोई जय मनाठ पैरता का जस गावी जय जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म जे प्रसाद आरो कंचन देही लिबला वो तराम स्नेही जे प्रसाद तेरे सगल सिद्ध ढाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: जे प्रसाद तुझको न पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊंचे
0: जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे
1: जे प्रसाद हुकम पहरी जे मन तिस सिमरत क्यों आस की जय
0: जे प्रसाद आस हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी
1: जे प्रसाद भाव मत तनारा प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मन बनत बनाई ऊठ बैठ सत

0: गुर प्रसाद नानक जस कहे,
1: जे प्रसाद सुने कर नाद, जे प्रसाद देखे बिस्मार,
0: जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सह जे बसना,
1: जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले,
0: जे प्रसाद परम गद पाव है, जे प्रसाद सुख सह जे समाव है।

0: साध के संग मुख उजल होत, साध संग मन सगली खोत,
1: साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग परदेसो ज्ञान,
0: साध के संग बूझे प्रभु नेरा, साध संग सब होत निवेरा,
1: साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग ऊपर जतन,
0: साध की महिमा वरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रमाए समानी,
1: साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर भुले,
0: साध के संग आवे बस पंचा, साध संग मर्त रस पुंचा, साध के संग न कतू तावे, साध संग स्थित मन पावे,
1: साध के संग माया के पेन, साध संग मन प्रासो प्रसन्न,
0: साध संग दुश्मन सब मी

0: परमानंदा
1: साधक संग नहीं होता बल साधक संग तेरे संग आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई
1: साधक संग न कबूतावे साधक संग सदा सुख पावे
0: साध संग पास्ता गोचर लह साधु के संग जर सह
1: साधक संग बसे तान जय साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दिलड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब को लो धार साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार
1: साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सो बासुर देवा
1: साधु के संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कछु काल दर्शन पेट दोत निहाल
0: साध के संग कलु खगहर साध के संग नरक पर हर
1: साध के संग साध संग विचरण मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न व्यर्था जावे
1: पार ब्रह्म साध रत बसे नानक उदरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मनते बिसे साध संग सब परम निस्तरे
0: साध के संग न गे प्रमीठा साधु के संग कड़ का डीठा
1: साध संग पे आ गया कारी साध संगत पे हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संग

0: श्रेष्ठ समान, जैसे राज राम को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक जो पाव का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी का मन हो प्रगास, जैसे तारे ऊपर आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के सतर सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन परे, नानक जन प्रगाप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पड़या।

0: ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा ब्रह्म ज्ञानी कै होय सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संसार

0: पास प्रेत मुगत पाथर को तार
1: नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: काहू जुगत कितना पाइए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखया तो।

0: कई कोट भूत त्रेसु कर मृगाच
1: नेरे सबूते दूर नानक आपल पतरिया भरपूर
0: कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी।

संगत में आवे कभू भला भला कहावे कभू होए पंडित करे बख्यान कभू मोन धारी लावे ध्यान कभू कीट

0: कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्ता गए सुख पावे
1: कर पावे
0: बोल लश्कर मान

0: संत का दुखी किते काज न पहुँचे,
1: संत का दुखी को ज्ञान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा,
1: संत के दुखी के जड़ किस नाए, अपन बीजा पे ही खाए,
0: संत के दुखी को अवर न रखनार, नानक संत पावे तले वार,
1: संत का दुखी यहाँ बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फटाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव इंदर नहीं त्रापे,
1: संत का दुखी छुटे अकेला, जो पाठ फिल खित माए दहिला,
0: संत का दुखी तर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
1: कहत निंद का करी पया, नानक जो तित पावे सोई दिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को

0: चरण सासर परसनहार पूजा सासा से बद्धार आप सत सास अवतारी आपे गुण आपे गुणकारी भूजन हर को सास होए नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत सलोक जिने जन मानिया करन करम तेन मूल पछानिया।

0: काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख बेडाणी।
1: बारंबार बार प्रभ जपिए, पिय अमृत मन तंत्र पिए।
0: नारतंजन गुरमुख पाया, तिसक चवर नहीं दिसताया।
1: नाम धन्ना मोर उपरंग, नामो सुकर नाम का संग।
0: नाम रस जो जान तृप्ताने, मन तन नामे नाम समाने।
1: उठत बैठ सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम।
0: बोलो जस जे बा दिन रात, प्रभ अपने जन की निधात।
1: हे भक्त तुम कह जाए, प्रभ अपने सुरे समाए।
0: जो होया हो वसो जाने, प्रभ अपने का हुकम पछाने।

0: सतगुर सिखे बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हाटे
1: सतगुर सिखो नाम तन दे गुर का सिख उठ भागी
0: सतगुर सिख आलत पलत सवारे नान सतगुर सिख जिए नाल समारे आप इसको कर कछु नज नावे हर हर नाम दे सत

बीस बीस में गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गात जाने सर्वदा जी का दाता आठ पहर पाव रंग राता सह स्यानप लिया न जाइए नानक ऐसा गुरबट भागी पाइए।

विचार एक सिमर नाम आधार कर्ण कारण सो प्राप्त समर्थ दृढ़ कर गयो नाम हर वत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस सुखो निज बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत अनि को पावी रोग न जाए रोग मिटे हरे उखद लाए मन पर वदा हर के नाए।

नाम जपाओ संत कहत रहत गत पावो गुण गावत तेरी उतर समैल बिंस जाए होमे बिख फैल सार्थ्यान

कोट को आधार नानक मांगे ना प्रवसार जिन चाख्या से जंत ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने

नास नानक नाम जपो गुणदास। नेत्रो पेख दर्शक होए मन भिक्षे साध चरण धोए। एक बसदी जे कर मैया गुर प्रसाद नाम जप लिया।

अश्वनी। जब अकार एक स्थान दिसते तापन तब कहते होता जब इसका बन चिन्ह न जापत तब हर्क सोग को किसे व्यापत आपन खेला वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब एक हर अग में अपार तब नरक स्वर्ग।

अब नाशीस हो गया अपने आसन, तय जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जा अभिगत को चपरा वेखा, तब चित्र गोद कुछ भी सुतल लेखा।

0: पाप को आपे तनी उनकी स्वभाव नो बनी
1: आपे को तो करियन जोग आपे रसपूत ने जोग
0: जिस पावे तसे आप पढ़ना लावे जिस पावे तस खेल खेल।

सरा के तिस कोई न मारे सो मुआज स मनो विसारे जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर हुवत कृपाल पित पाले जियन बपात जो जो रचियो सो तुसे त्यात मन अंतर विश्वास कर मान्या कर्ण हार नानक एक जान्या सेवको सेवा बने।

साध संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद अमृत बचनार के गुण गाओ प्राण तन कायो सुहाओ सुन उपदेह हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते सारे

नान अमृत प्रभु का नाम देहि में इसका विश्राम तेन देखा से आप दिखाए ना तेजा सोजी पाए तन माया काश प्याल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल कौन पानी बेसंतर मा है चार कुंट दद से समा है बे प्राण से मत में देखा ससिय सुन खतर में एका सर्व कला करके ले खेला मोल न पाइये गुणे अमोला गौर प्रसार परम का नाश ना तन में हो विश्वास संजना सुनो शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभ जाने आप सत किया सब सत तिस प्राप्ते सगली उत्पत अनी कला लखी न जाए जिस पावे से ले मिलाए अंतर्गत

आप साच धारी सब साच ओत पोते अपन संग राच जिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक के हो जान।

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निदया वे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सब थाई हुए सहाय। दसा

दिन करके की थी रात। खसम विसारे ते कम जात, नानक नावे बासनात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सत पुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे कर्म सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश।